माता जी न पानी न मुंह पुने न मान भी काउने न संगुनुं देगे होइ दो हुने रंगे लोई भी ना सिंया आतंग आलम तुम्हाई गई दी काउने

0: Tabire radio class chamri ni phum do subatang kakta class 6 ki english subject ki lesson number 16 in the quest of the lost spare tharumasi department of education and samagra shiksha manipur na puthopani
1: badlo badlo aadat badlo
2: machine mein kapde dalne se pehle check nahi kiya tha kya
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: हौजी खुदोल तमजरी हमोम बर्लिन गिनाइटुम खोंजलदा राजन येंकोकपमना सैरिंगबा मणिपुरी मटमिसई

ओइनाम स्वामी कुमार दगी फजरबा मणिपुरी मट्ट में से इमा ताबिरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिकयु के पुंग तरे तारे संदोकचरी खोंजेल नाचोम।

0: हेलो
1: गुड मॉर्निंग मणिपुर गीत हम दाराम नोकचरी
0: गुड मॉर्निंग मैडम
1: गुड मॉर्निंग
0: सुपर
1: लोंगजम देवान कुरे नाखीदु मरुप कमदौबीरी नुंगाइबीरीब्रा नुंगाइगरी गुड मॉर्निंग मणिपुर की थोरम असिद करंब नुंगाइबे इसैनो कनबीदोइसे करंब नुंगाइबे इसैनो मरुप ना कनबीदोइसे कनबियो
0: ओ थाजबगी वांगमदा दिनेस
1: शरद युनाम की ओके नमक चमना सैरंग मरुप इसे खुदोल तमजरकलगे नुंगाइना पुन्ना तामिनासे
0: थैंक यू मैडम
1: वेलकम

offended. Don't angry me. Mind it. अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है? कोरियोग्राफर को मैं ही सिखा दूँ. फूक

0: ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯕꯥꯏꯀꯤꯡꯁꯀꯤ ꯒꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯒꯤꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ.
1: बदलो बदलो आदत बदलो.
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो. अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए. अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें. RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: हेलो, हेलो, हेलो लेडीज की थोड़ा नहीं कनाव भी रबनो
1: हेलो
0: ताज़े ही मिंगले फ़ोन है भी यू यह रिपोर्ट अंधा दगी तकलम्बम मंदाकिनी मंदाकिनी गीतांजलि गीतांजलि तराम नोक्सरी करी वफ़म थम्जिगे है भी यू है भी यू गीतांजलिना खलगत वफम माले जर जोदे नुमाइताबरसुको नुमाइबे युम्बानुमा खुदिमक्तुना अंगम अंगम मतेंग पांगनरगा नुमाइगदोबनी मसिमासु थंबिरे अदुगा मसागी तंदना हाइबे तारेको मयाम पुना सुनोमदन लेमिनबे वफम मसु थंबिरे अदो यारीपोक माइके सिदी किहोम साबगा याम सनबनि हौजिक सिबो दुम सनरि ब्रो लोइसला ब्रो कमाइन तौरिगे
1: ओ दि पिक पांग पांग लेगनि ने चाबे दि चांग खदि बिनगरे दि किहोम दि किहोम दि खदि दि पि थोइ काम मतम दि पि खसरे खदि हन खरे
0: होय होय ताबरे याम नुमाइ जे अखोगी वफम फजब थंबिरम बा तखेलमम गि तांजलि थाखर फोन रोकचरी इसै मते अमम तामिनसे खुदोल तमजर के सोमन से सोइन की ताबियु लामई फिल्म दगी सैनी मयाम पुन्ना तामिन से
1: ओ लाम पाम दे होइ छै नि ताजागे
0: थागत सरी सलाम सोफिया गी कोंजेलदा तामिन से

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अयु किपुंग तरामा थे मिनट यांखई तर चले मीडियम वेब मीटर चहुंग निफू दशमिक अमा किलोहर्स निपान मरफुनी थैदा कंगला चैनल के निशुभ थौरम परें तोंगाना ताव फंगबीरगनी मिकु खरदंग नाइमिनसी मखल मचल की थौरम क्या संदोक्तुना तहनजरी वसिना आकाशवाणी इम्फाल की संघाई चैनल लगनी।

मखल मचे की छोरम क्या संडोक ने तहन जरी बसी आकाशवाणी फागे एफएम संगाई चैनल देगी चथ जरी बे थोरम परेंगी नमीचुंग मतुंग पुंग तरा नि थे मिनी तरा लांथोक चगनी रेडियो लीला पोथा संग लीला सी गई बा थोकचोम धर्मसोर सिंह पुथोक तेंबांग बा अथोकपम सुभा चंद्र थोरम पुथोक बा माइवम ईशाकांता

नमस्कार कुरुमचरी, मैं निंगथोकोंगजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीतमाला में आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत धमाका, और आज हम हर रविवार की तरह लेकर आए हैं कुछ धमाकेदार गाने। तो सुना जाए पहला गीत अ जेंटलमैन फिल्म से, शर्ली सेठिया और बेनी दयाल की आवाज़ों में एक गीत, वायु की शब्द रचना है और सचिन जिगर का संगीत है।

0: डिस्को।
1: दोस्तों अगला गीत है गुल्ली माता। ये एक लोकप्रिय अरबिक हिंदी क्रॉस कल्चरल रोमांटिक गाना है जिसे मशहूर गायिका श्रेया घोषाल और मोरक्कन गायक साद लमजरत ने गाया है। इस गाने के वीडियो में प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री जेनिफर विंगेट और साद लमजरत नजर आए हैं। रिलीज होने के बाद से ही इस गाने ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हासिल किए हैं।

सुना जाए अगला गीत नेहा कक्कर, टोनी कक्कर और यंग देसी की आवाजों में फिल्म लुका छुपी से। टोनी कक्कर और मेलोडी की शब्द रचना है और टोनी कक्कर का ही संगीत।

दोस्तों गाय जसलीन रॉयल और बादशाह द्वारा रिलीज किया गया एक रोमांटिक गाना है इना। आइए सुनते हैं इस गीत को।

फिल्म फुकरी रिटर्न से सुना जाए अगला गीत ज्योतिका टांगरी की आवाज़ में, कुमार की शब्द रचना और शारीफ तोशी का संगीत।

दोस्तों, समय रायना के शो इंडियन गॉट लैटिन के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में एक गाना सुनाया गया था जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, ओए होए क्या सीन है। इस सुपरहिट चाय एंथम को दो दोस्तों यंग एजे और रॉकिंग गोली ने मिलकर तैयार किया है। यह एक ओरिजिनल जबलपुरी स्टाइल का गाना है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

अगला गीत है कल्याणी, एक लोकप्रिय इंडी म्यूजिक और सोशल मीडिया ट्रेंडिंग गाना है जो मूल रूप से एक मलयालम ट्रैक के रूप में वायरल हुआ था। इसके बाद इसके हिंदी मिश्रित संस्करण काफी पसंद किए जा रहे हैं। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल, ARJN KDS 54 और RONN ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुनेंगे फिल्म मैं तेरा हीरो से अरिजीत सिंह और शाल मलिक खोलगाड़ी की आवाजों में कुमार की शब्द रचना है और साजिद वाजिद का संगीत

मखल मचल की थोरम क्या संदूक तूने तहान जरी बसी आकाशवाणी फाल्गी एफएम संगाई चैनल देगी हौजिग अमुक लांथोक चरी मणिपुरी फिल्म इसई सिंह खुदोल की अहान बदले जरे इमा मचेत इचा तंखाई फिल्म से देगी नोमाइथेम इवोम चामदी हुद्रोम पुष्पारानी अनिपुन संगीनबा इसे सैरेंगबा बीर मंगोल मेकोला सैरंगबना नोमाइथेम इवोम चा तावीर सिंह

मखल मचेल की थोरम के आसन रोक तुन तहन जरी विषय आकाशवाणी इम फाल गिनी संगाई चेन्यू की थोरम लेप तुन तावेरी विषय बो तारामनोक चरी हाउजिक अमुक संदोक चरी अंगांगी थोरम

0: ਸੰਦੋਕਤੋਂ ਤਾਂ ਜਰੀਵੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਫਾਗੀ ਐਫਐਮ ਸੰਗਾਈ ਚੈਨਲ ਦੇ।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
1: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
2: हाँ
4: आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिग मुक्तावीर से रेडियो क्लास चामरीगा निफुमरी सुब तंकक नसी तंकक से लेजरे क्लास सेवन इंग्लिश सब्जेक्ट की लेसन नंबर 14 ए ट्रू फ्रेंड थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस सामग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांग लोनना पुथोक्चब थौरमनी तावीर से रेडियो क्लास

अथोकपम ग्वापे सोरसिंग खोंब बासी ताबीरे ताबीरे बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चिलनी हौजिंग से नुमदांगमदी हयिंग की चैनल से चथजरकदबा थरुम सिंह सामनम निशिंजरी।

0: द राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री सिंगना लुचिंग असिगी मफमदा इकाई कुमनब उठकी। गृहमंत्री अमित शाह ना राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिला दलाईबा निम्बा हेरादा हाने की प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मिता ममा माइकुम हांगदो पगलोना तोंगान तोंगान बचाको थोरांगी प्रोजेक्ट सिंग औदोकी थौरम दो वांगांग बदा मांग हाई प्रधानमंत्री वाजपेयी ना लेबाकना हाना हाइबा वाखलोन दा ऐतिहासिक ओरबा मरु एबा वारेप क्या लौरमी मांग ना हाई वाजपेयी की मतम दा ट्राइबल एफियर्स मंत्रालय अमसुंग अवांग नोंपोक लमदम चाखतना बगी दमा तोंगान ब मंत्रालय डोनर लिंकट की। बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने सिंधु ने इम्फाल की थंबाल संगलन हाने की प्रधानमंत्री अमसुंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति दिवस निमित पांगथोक्रे थौरम दोल की प्रेसिडेंट अमसुंग राज्यसभा सदस्य अधिकारी मयूम शारदा देवी ने लुचिंगदुना लुचिंग असी की फोटो लाइक कट की। बीजेपी बिष्णुपुर मंडल ने सिंधु ने हाने की प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की निपान सुब पुण्यतिथि पांगथोकी थौरम वांगांग बद गृहमंत्री गोविंद दास कौथोजम ने हाई अटल बिहारी वाजपेयी ने लेबाक असी की गणतंत्र की मपांग कखनब अचेप फिरेप लेबाक असी की अमत चौखटना होनब अचोब थौदांग लौरमी महांग फोंदंगलोब वाही क्याना तुंग की मिरोल सिंगदा चौना पुनिंग थौगटली। बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने अगस्त थाबुम सिबु अथोप सिंगी निंगसिंग था हाइना पांगथोकली थौरम की सरुक अमोयना दोल की स्टेट प्रेसिडेंट अमसुंग राज्यसभा सदस्य ए सरदार देवी नंगासी इम्फाल की थबाल संगलेंदा हौख्रबा हौजिक ओरिबा अमसुंग तुंग दा ओयगदबा मणिपुर हाइबा वाफमदा नोमगी ओयबा खना नैनबगी थौरम हौदोकी थौरम दा एमएलए थोंगाम बिसोजी सिंह थोक्सोम राधेश्याम सिंह अमदी दोल की कर्मी क्यामरम सरुक याकी थौरम दुद खोंग था यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नौरेम जय कुमार मणिपुर यूनिवर्सिटी की हाने की दीन प्रोफेसर डब्ल्यू नव कुमार अमसुंग एडवोकेट पुयाम तोमचा वांगांग की थौरम दुद म्यू क्या व्हील चेयर अमसुंग वॉकिंग सिक एंथोकी थौरम से की दोल की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्री नोंग थोम निम्ब सिंह ने हाई
1: थौरम हौजिक मणिपुर की तंगदू लेता फिल्म नहारोन छात्र छात्री मणिपुर की हौखब अखोगी पुवारी हौजिक तुंग मणिपुर सेना फिवम खाहब मसी पांडम भारतीय जनता पार्टी ना खन नाइनब की थौरम से पांखोक्चबनी।
0: बंदे मातरम ने सही साम यांखई सुरप कुमोन थरुंगा मरी लेनना असम राइफल्स ने सिंधुना कांगपोपी जिला के कोटलैंड दा तिरंगा बाइक रैली पांगथोकरे थौरमसी पांगथोपगी मरुइबा पांदमदी औरलइबा मिरोल सिंगदा बंदे मातरम गी मरुइबा अमसुंग मसिना भारत निंखा तमना बहोना बदल लौखिबा थौदांग अदुबु निंगसिंग हनबनी थौरम दुदा असम राइफल्स अमदी मफम अदुगी मियाम सिंगा उनदुना मियाम अमदी सेक्रेटरी गी मरकते लैनरीबा मरी हेना सेशन हनबगी मतांगदा वाफम क्या खनखी। INA लोकल एडवाइजरी कमिटी ने सिंधुना बिष्णुपुर जिला की मोयरांग INA मार्टियस मेमोरियल कम्प्लेक्स जाति की मचू ओं की फिराल चिंखकरे कम्प्लेक्स पांगथोकी थौरम INA वार म्यूजियम कम लाइब्रेरी मोयरांग की क्यूरेटर डॉक्टर लाइश्रम साधना देवी INA लोकल एडवाइजरी कमिटी के कन्वेनर श्री वाई मोदुना भारत की मचू ओं की फिराल अदु चिंखकी पाव की मरक्तना ब्रेक अमा
2: NABH Phanglaba AOI Babina Speciality Hospital Asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine Laying Bagi Khudong Chaba Pizari State Asida Ahanba Oina Thyroid Cancer Gi Iodine Therapy Haubaga Loinana Cancer Khangdop Naba PET CT Scan Leiraba Hospital Ni CMHT PMJY Card Paiba Amasung Government Employee Singisu Laying Bada Khudong Chaba Pizari Dr. Singna Tumor Board Phamduna Anaba Singi Laying Da Chaungna Mating Pangli Akupamaro Gidamak AOI OI Babina Speciality Hospital, Sajiva Jail Road, Khabaisoi, Imphal East, Tanabiu.
3: Rolex Tilhat Hidatna, Lomi Singi Sheba, Sehimari Mangato Zeratlabamatunda, Tilgi Mapangal Hena Kankalapana, Ano Bumasal Kaya Hapsinduna, Rolex Tigi Hena Matam Sangna, Til Sing Digging Atopangam Laba, Rolon Ultra, Lomi Sing the Kudol Tamzeri, Mayol Sipi, Manakon Sinbi, Hold the Taba Utong Tin, Narukabi, Marek Angangbi, Waikupmanbi, Ingelai Chubi, Using Sanambi, Til Mahichopatil Sindigi, Lion and Atopangami, Mausagi Kalda, Akaiba Amat Tapide, Pampovagawa, Masukla later, Har Natragaling.
0: आकाशवाणी इम्फाल Raja Sabha Sadasa Adhikari Mem Sarda Devin Hari, Hokiba Sehikari Mamangi Manipur Toliba Irangasi Lakshin Nabahonabada, Sarkar Katada in Tok Piganum. Kaksing District Yogasana Sports

0: 예수다서마 디헴나 타기 분부 컨젤다 기드시타 한자 키베글로니나 상하이실린 기 더름 산독서바 나시기디 마땅하실로 신자리 하잉 오거스키 땅 따라뜨릿 인토가부누밋 타완 타기 망하니 반바 사카들리싱 마사마팔 니푸니팔기 누아이레부 더름 깨야글로니나 아둠부무 아이저름기 나시기위네디 다비디바 뿐무키 품대기 가이네야탱니 자리 비네비르시 제이힌
1: जुड़े होते हैं कई गीतकार कई अरेंजर्स कई म्यूजिशियंस लेकिन पर्दे के पीछे के लोग कई दफ़ा हमें याद नहीं रहते और उन्हीं कलाकारों को आज हम हर सिंगार में याद करेंगे यानी याद करेंगे कुछ अरेंजर्स को किसी म्यूजिक डायरेक्टर की सोच को अरेंज करना और इस तरह से पिरोना कि जनता की जबान पर वो गीत कई बरसों तक नया बना रहे शायद यही सबसे दिलचस्प काम रहता है इन अरेंजर्स का

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

10:36 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम हर सिंगार। गीत के पहले मैंने आपसे ये बात कही थी कि कोई संगीतकार जो होता है उसको एक धुन हो सकता है उसने उसको पसंद आ गई हो और अब उसके सामने एक चैलेंज ये होता है कि इस धुन को पिरोया कैसे जाए, इसका नोटेशन कैसे लिया जाए। और यहीं से जो काम शुरू होता है वो होता है अरेंजमेंट का। और इसी अरेंजमेंट के लिए हमारे सामने बहुत से ऐसे नाम रहे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया। इनमें से कई नाम ऐसे भी रहे जिनको हम जानते हैं और कईयों को हमने भुला दिया। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोवा के इन कलाकारों ने उन गीतों में वेस्टर्न अंदाज देने के बावजूद हिंदुस्तान की मिठास को बनाए रखा।

1957 की ये फिल्म थी और फिल्म का नाम था आशा और किशोर कुमार का ये गीत चितलकर यानी सी रामचंद्र साहब का संगीत। देखिए 1957 का गीत आप तक पहुंचा और हम अभी जी रहे हैं 2026 में और मैं जानता हूं जब तक ये गीत आपके साथ बना रहा और हो सकता है कि जहन के किसी कोने में आपने भी एक बार ईना मीना डी का गाया जरूर होगा। और इसे गाने की एक खास वजह जो मुझे लगती है वो इस पूरे गीत का अरेंजमेंट जो आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। तो इस गीत को अरेंज किया एक बेहतरीन कलाकार ने, उनका नाम रहा चिक चॉकलेट। कई गीतों के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है सी रामचंद्र और बाकी संगीतकारों के लिए। चिक चॉकलेट ट्रम्पेट के लिए काफी मशहूर रहे और कहते हैं कि उन्होंने ट्रम्पेट खुद सीखा। इतना ही नहीं, उस दौर में अपना खुद का एक जैज बैंड भी तैयार किया। प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, आपके साथ मैं इस सफर में विकास।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

देखा जाए तो मेलोडी और रिदम को संगीत से अगर अलग कर दिया जाए या किसी गीत से बाहर कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ गीत के तौर पर हमारे सामने शरीर बच जाता है और उसमें से आत्मा नहीं रहती। और संगीतकारों का ये काम था कि उस गीत को इस तरह से पेश किया जाए कि ना सिर्फ गीत हमारे सामने हो बल्कि वो अपनी आत्मा के साथ भी रहे। और ऐसे में गोवा के ये म्यूजिशियंस बड़े काम के निकले और उन्होंने अपने संगीत से, अपने अरेंजमेंट से संगीतकार की उस सोच को पर्दे पर और संगीत के जरिए सामने पेश किया। अरेंजमेंट्स की अगर बात करूं या अरेंजर्स की अगर बात की जाए तो उसमें कई नाम हमारे सामने आते हैं जिनमें फ्रैंक फर्नांड, एंथनी गोंसाल्वेस, चिक चॉकलेट और सेबेस्टियन डिसूजा। और इन सभी नामों ने कई संगीतकारों के साथ अलग अलग फिल्मों में काम किया। जैसे अगर आपने फिल्म देखी हो जंजीर, डॉन और हेरा फेरी, तो इस फिल्म में एक अरेंजर या कहूँ टेक्नीशियन जो थे उनका नाम था फ्रैंक फर्नांड। और अगली दफा जब आप जंजीर फिल्म को देखें तो इसके संगीत को, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को

करते हुए पर्दे पर बदलते हुए दृश्यों को देखते हुए ये जरूर याद कीजिएगा कि इसके साथ एक कलाकार और जुड़ा हुआ रहा जिनका नाम रहा फ्रैंक फर्नांडीज़।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो

सेबेस्टियन डिसूजा ने तकरीबन 30 साल तक शंकर जयकिशन के साथ काम किया और लाहौर से मुंबई का रुख किया था इन्होंने, और उसके बाद वायलिनिस्ट के रूप में इन्होंने धीरे धीरे काम समझा और सीखा, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत की ज़रूरत उस दौर में रागों से जुड़ी हुई थी, तो इन्होंने रागों की भी अपनी जो विरासत थी उसको पहचाना और उसे भी सीखने की कोशिश की, और उस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। प्रोग्राम का आखिरी गीत से पहुंचता है आप तक दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का, और इस फिल्म में भी बेहद खूबसूरत इस्तेमाल किया गया वेस्टर्न अंदाज का और साथ में हिंदुस्तानी अंदाज का, और उसका परिणाम ये है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये गीत हमारी और आपकी जबान पर बना हुआ है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मंच से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be addressing fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. Karubari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. श्रोताओं आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं ये नंबर्स हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी आकार मार्केट मंत्र में आपका भी
0: वार्म वेलकम आकार
2: थैंक यू
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले सुर्खियां
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ ऑगस्ट In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week. And domestic investors to focus in on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले दो सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ोतरी हुई और घरेलू निवेशक अगले सप्ताह एफओएमसी मिनट्स कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: दिल्ली से हमारे साथ ललित जुड़ रहे हैं ललित जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
3: जी मैडम नमस्कार
1: नमस्कार
3: मेरा सवाल ये था कि अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन में लॉस बुक करते हैं 1,00,000 रुपए का और सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी और शेयर में हम 5,00,000 रुपए का कैपिटल गेन ले लेते हैं तो मुझे क्या जो टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन में वो किस अमाउंट पे देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा
2: ललित जी जो आपका सवाल है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैपिटल लॉस करते हैं जैसे अगर कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेच के करते हैं और वहीं पर अगर उस सेम फाइनेंशियल ईयर में कहीं दूसरे कुछ कैपिटल गेन्स होते हैं तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं लेकिन इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जैसे कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही हो सकते हैं शॉर्ट टर्म है वो दोनों के साथ हो सकते तो एक ये सर्टेन कंडीशंस होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी उसके अलावा जो है आपका इसके लिए आपकी जो रिटर्न है वो टाइम पे फाइल होनी चाहिए जो 31 जुलाई की डेडलाइन होती है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते जो आप बाद में लेट रिटर्न फाइल अगर करेंगे तो फिर आप ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और अगर कुछ एक जो लॉस रह जाता है उसको आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बाकी इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि ये जो मैंने आपको बताया आप

0: एक दफा बेहतर रहेगा अगर किसी एक टैक्स एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट कर ले।
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अन्य खबरों में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI अगस्त के पहले दो सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लिवाली के जरिए, जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की रफ्तार अगस्त में भी जारी है। मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद और कंपनियों के बेहतर तिमाही परिणामों के कारण खरीदारी को समर्थन मिला है। इस बीच ऋण बाजार में भी विदेशी निवेशकों की रुचि देखी गई है। अगस्त में अब तक जनरल लिमिट रूट के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों में 69 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वहीं फुल्ली एक्सेसिबल रूट के माध्यम से इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने 972 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
2: Okay, Akar, very interesting point somebody was discussing with me, and I'm in turn asking you about this. What should I choose, dollar or gold?
0: I would say gold here, because when it comes to the Indian portfolios, so gold has a different role in your portfolio. It basically helps you hedge the risk. So what we have seen over the years is that whenever equities fall or there is uncertainty in the market, a fear in market, gold generally shines. So in such a scenario, it is better to have gold, but at the same time ensure that it does not form major part of your portfolio, because it is not a productive asset. When we invest in equities, when we invest in equity stocks, there we do get dividend. There the whole system, a business is working wherein, you know, it is earnings, quarterly earnings comes in. When we are investing in fixed income, therein the earnings happen through the way of interest, a fixed charge on the revenue of the companies, whether they are making profit or not. But in the case of gold, the price depends only on the demand and supply. So it is basically dependent on the other person, which is willing to pay, you know, over and above or less than what you actually paid. So for that reason, hold it in your portfolio, but only as an insurance, maybe 5-10% or maximum 15%, not more than that.
2: Okay, and you just answered our listener about July 31st being the last date to, you know, file our IT returns. What is important is that people do not plan their tax outgo throughout the year. So what kind of planning should one do so that they are not taken in by surprise towards the end of March, that okay, where should I, you know, invest so that my tax exposure is not much? How should one plan this?
0: So firstly, I mean, in this particular case, it was broadly related to the setting off and the carry forward of capital losses, which is impossible if, you know, someone doesn't file the returns on time, the 31st July. More than that, this planning was, you know, had more relation in towards the deductions which we used to, you know, take on and the investments we used to make during the month of January to March, the Section 80C investments. All these, you know, deductions have by far gone in the new tax regime. So, but even in that case, I would say for that reason, I mean, one should not stop investing and rather look at their, you know, the whole income or the income plan at the very beginning of the financial year, plan their advance taxes and, you know, if capital losses or gains planned any. I mean, plan their everything systematically.
1: Amit हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपने सवाल।
3: मैडम, थैंक यू। मैडम, मुझे एक्सपर्ट से सवाल ये था कि हम ऑनलाइन यदि गोल्ड लेना है 1 ग्राम 2 ग्राम ये ले सकते हैं क्या, जो इसे गोल्ड परचेस करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, यूनिट्स परचेस करते हैं हम लोग, तो सपोज मैं सिर्फ 1 ग्राम परचेस करना है या तो 5 ग्राम, तो क्या कुछ सोर्स कैसा है? थैंक यू।
0: अमित जी, बिल्कुल, गोल्ड अगर आपको जैसे ऑनलाइन परचेज करना है तो देखिए, सबसे पहले जो बहुत एक अच्छा तरीका था वो भारत गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे जो कि 1 ग्राम के यूनिट में इशू होते थे, और इसमें जो भी गोल्ड का प्राइस होता था उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता था, बट अभी

0: काफी समय से जो इसके जो प्राइमरी इशू होता था, जो फ्रेश ट्रांसेस होती थी, वो नहीं आई है. तो ये केवल सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है. तो उसकी एब्सेंस में जो एक बहुत अच्छा तरीका है, आपके पास गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड है. इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. जो गोल्ड ETF है वो एक नॉर्मल शेयर के तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, और इसमें निवेश करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हो. ये एकदम फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है. आप काफी सारी कंपनीज के गोल्ड ETF से, उनमें से आप कोई भी जो कम खर्चे वाला, कम एक्सपेंस रेशियो का हो, आप उसका चुनाव कर सकते हैं. और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या फिर आप नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड नहीं करते, या फिर आप एक सिस्टमैटिकली भी करना चाहते हैं SIP के जरिए, तो बहुत ही एक आसान तरीका है, आप गोल्ड फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं. गोल्ड फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन टर्न आपका पैसा जाके ETF में इन्वेस्ट कर देगा. तो एक कन्वीनियंस के तौर पर और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड वहां पर थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है.
1: गाजियाबाद से हम आशु को जोड़ेंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं आइए जान लेते हैं कि सप्ताह के दौरान सर्राफा बाजार की स्थिति कैसी रही. सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई. अमरीकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट तथा उम्मीद से कम अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के चलते फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई. इन सभी कारणों से सोने और चांदी की कीमतों को बल मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 1.8% बढ़ा और 1,54,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% बढ़कर 2,35,924 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची. कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 0.8% से अधिक बढ़कर $4,437 से अधिक प्रति ट्रायउंस पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 2.5% की बढ़त के साथ $65.10 प्रति ट्रायउंस पर पहुंच गई. और गाजियाबाद से हम जोड़ रहे हैं आशु को. आशु जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: थैंक यू. एक्चुअली लिटिल कंफ्यूज्ड, आई एम अ रेगुलर इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स, बट द पॉइंट इज आई रेड एन आर्टिकल दैट मोस्ट ऑफ द or the biggest mistake a person investing in mutual fund does is that not tracking it. Like I was told, like you invest it and keep on investing it and forget about it. Don't look into it much. So I did this, and then I started tracking it through one of the applications on cell phone, etc. I came to know that some funds which were doing pretty good, according to me, they said this is not doing good, this is off the track, do this, do that. So I am now confused, like I am a regular investor, and what is the approach which I should follow? Should I look into it and track it regularly, and should I trust on the various applications which are there available, growth, it's like some there were 2-3 desire growth or some thing that they are saying that stop investing in this mutual fund and invest in that mutual fund. So I don't know which way to go as of now.
3: Too many
2: so
3: voices.
2: So that is one thing. And in related to this is, what is XIRR? So these are the two things. I just need some clarity on these two points. Thank you. Sure.
0: So this is actually a very common problem which, you know, a normal investor goes through, and we often get these kind of questions. So firstly, when we say that you don't have to track it regularly, what we mean is that some people get obsessed with their portfolios, with their investments, like investment in direct equities. What they start doing is that they start opening their portfolio every single day, or maybe 2 times in a day. And start tracking it, like whether it performed better than the previous day or not. So you should definitely be tracking your portfolio, but not on a daily or a weekly or even on a monthly basis. Maybe once in 6 months or once in a year is also fine. At the same time, as you said that, some funds were previously doing good, but now they are not doing good. So yeah, definitely. So a mutual fund scheme does go through both the phases. At some point of days, it would do better, and this is there, and at some point of days, it won't do better. So, every fund would go through a good as well as a bad phase. So what we need to do is we don't have to, you know, get out of a scheme immediately when, you know, it goes through a very short term underperformance. So it is quite possible that a fund may have underperformed over the last 1 month, over the last 3 months, but that should not be the sole reason to, you know, just get out of it. What one should be doing is to go and check the long-term performance and, you know, the reasons behind it. So, you know, give it sufficient time. At the same time, you know, as we have been saying that, you know, there are multiple apps here, definitely. So while, you know, increased number of fintech apps have, you know, made it very simpler for us to, you know, start investing and, you know, track our portfolios, this is one of the problems which has emerged because, you know, you get to hear, as Sir was saying, from too many voices. So here the best part would be to compare its performance from the category average and other schemes in that particular category. The XIRR you were talking about is basically the annualized return when you do not invest in a lump sum, when you invest in SIP, when the money outflow and inflow is at irregular intervals. So when you just make one lump sum investment and then make a withdrawal, there are just 2 points. That is basically the CAGR. And when you invest through SIPs and, you know, there are multiple inflows or any other transaction, then the annualized return calculated is XIRR.
1: आकर एक और सवाल मेरे मन में है जो बहुत सारे लोग मैं यकीन करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के भी मन में होगा जो नए इन्वेस्टर होंगे या जो कुछ समय से इन्वेस्ट कर रहे होंगे थ्रू SIPs. हमारे पास अगर एक कॉर्पस ऑफ मनी है तो हम उसे सीधे तौर पर लमसम अमाउंट की तरह किसी फंड में लगाएं जो फंड हमें लगे कि ये फंड ठीक है, या हमें एक रोज रोज धीरे धीरे करके हमें खरीदना चाहिए जबकि हमारे पास एक साथ ही उतने पैसे मौजूद हैं, फिर भी हम फ्रैक्शंस में खरीदें या हम एक साथ ही जो पूरा बकेट है वो पोर कर दें?
0: बिल्कुल फ्रैक्शंस में एक साथ बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो हमारे को नहीं पता कि उस दिन जो मार्केट का लेवल है वो उसके आगे वो और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा. शॉर्ट टर्म में हम लोग कभी भी मार्केट की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. तो ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि मान लीजिए अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है और उसने आज के आज पूरा का पूरा अमाउंट निवेश कर दिया और ठीक एक हफ्ते के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गई 10% 20%, तो जो पूरा का पूरा पैसा है उस पूरे के पूरे पे वो रिस्क आ जाएगा, वो वैल्यू एकदम से नीचे आ जाएगा. यहाँ पे
1: 10-20% का तुरंत का घाटा.
0: बिल्कुल. अगर मान लीजिए अगर किसने 1,00,000 लगाया वो सीधा 90,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा. और यहाँ पे एकदम से इतना बड़ा लॉस देख करके बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स को एक एंग्जाइटी होती है,
1: हतोत्साहित मन हो जाता है.
0: हाँ जी. तो वो उस वक्त तो फिर उनको ये लगता है कि जितना पैसा बचा है वो मार्केट से निकालो और यहाँ से भागो, और उसके बाद वो लोग फिर कभी इक्विटी में निवेश नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाती है. तो यहाँ पे बेनिफिट जो अगर आप फ्रैक्शंस में पैसे लगाएंगे तोड़ तोड़ के, तो ये रहेगा कि मान लीजिए उस 1,00,000 में से आज आपने खाली 10,000 लगाया हो, तो आपने सोचा होता कि मैं हर महीने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा, अगले महीने तक वो मार्केट 10% गिर गया होता. तो यहाँ पे आप जब वो और नए 10,000 लगा रहे हैं, आप अपने परचेज कॉस्ट को एक तरीके से एवरेज आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले आपने थोड़ा महंगा खरीदा था, अभी आप थोड़ा सस्ता खरीद रहे हो और थोड़े ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप SIP के थ्रू निवेश करिए. अगर आपके पास लमसम है भी तो आप उसको एक अलग बैंक अकाउंट में डाल के वहां से SIP चालू कर सकते हैं. और अगर आपको इस चीज का डर लगता है कि आप वो पैसा वहां से कहीं और खर्च कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे, जो कि आमतौर पर रहते हैं, तो आप STP का, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपना फंड हाउस चुनिए, उनके एक लिक्विड फंड में उस पैसे को, पूरे लमसम को डालिए और वहां से एक STP सेटअप कर दीजिए अपने इक्विटी फंड के लिए.
1: बिल्कुल. दिल्ली से हमारे साथ वीर जुड़ रहे हैं. वीर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
3: सर. मैं ये पूछना चाहता था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म गेन्स एप्रिशिएट हो जाएगा जी?
0: शॉर्ट टर्म से अगर जो शॉर्ट टर्म गेन से आप लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है वो संभव नहीं है. लॉन्ग टर्म लॉस केवल लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही हो पाते, बट इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफा एक टैक्स एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट कर लें.
4: सो अकाल, वी बीन टॉकिंग अबाउट क्वाइट अ बिट ऑन you know, how the market panic happens amongst the people, and you have addressed it quite a bit as well. Given the market swings that we are seeing these days, primarily due to the geopolitical

0: firstly, I mean, first get a hold of like what kind of schemes you are invested into. What kind of categories do they fall into? Are they getting repeated within the same fund category? If yes, then look at their allocations. Maybe to, you know, clean out your portfolio, you can start by weeding out the schemes which hold less than 5% in your portfolio, or have a very narrow investment mandate, say some kind of sectoral or thematic fund, and you know, doesn't invest on through the complete universe, or doesn't have that flexibility with the fund manager.
1: Okay, moving on, the domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including the release of the FOMC and RBI MPC minutes, macroeconomic data, quarterly earning reports, and geopolitical developments. Investors are likely to take cues also from foreign institutional investor flows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor the monthly unemployment data and the latest figures on core industries growth. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with six new mainboard IPOs opening for subscription and five mainboard IPOs scheduled to make their stock market debut. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asia conflict. In Japan, GDP estimates and trade data will remain on investors' radar, while inflation figures from the UK will also be closely watched. Akar, very quickly, we'd like to understand from you regarding the IPOs. Would you recommend our listeners to actively participate in the IPOs and go in for them?
0: For a normal retail investor, unless until you have those skills to evaluate it and you know, have that temperament, don't go for them directly, because if you invest in a mutual fund scheme, your fund manager is already there to, you know, do that hard bit of work and take those decisions. But yes, at the same time, if you know, you feel very strongly positive of a particular IPO, you have analyzed it yourself, you understand what kind of you know, work that company does, and you have gone through the annual the complete prospectus, and you know, you have that temperament that, you know, if soon after investing on the listing day, there won't be much gains, but you still be able to okay and hold the stocks for a longer period of time, then yeah, definitely you can go and invest.
2: अगर मेरे पास कुछ पैसे हों जो मैं हर महीने खर्च करना चाहूँ, SIP में इन्वेस्ट निवेश करना चाहूँ, तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं, इसमें मैं परफॉर्मेंस देखते हुए मैं सब में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूं, या मैं ये देखूं कि यहाँ इस पर्टिकुलर कैप में मुझे सबसे अच्छी बढ़त दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, तो मैं यहाँ पर अपना वो जो सारा पैसा है हर महीने जो मैं
1: क्राइटेरियन
2: जी बिल्कुल
0: इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको उस पैसे की आवश्यकता कितने सालों के बाद होगी, वो क्या पर्पस है जिसके लिए आप निवेश कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटीज के अंदर भी, जैसे कि आपने कहा, जो सारी कैटेगरीज है, फ्लेक्सी कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, इन सब के लिए एक अलग अलग सूटेबल होराइजन होता है. केवल ये देखना कि यहाँ स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले साल बहुत अच्छे रिटर्न दिए तो मैं उसमें निवेश कर देता हूँ, सही नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, इनमें उतार चढ़ाव बहुत जोर से आता है, और आमतौर पर इसके लिए 7 से 10 साल का होराइजन रखना चाहिए. तो अपना होराइजन पक्का कीजिए, फिर फंड का चुनाव कीजिए.
2: बिल्कुल आकार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए.
0: थैंक यू
1: आकार फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 weeks ऑफ ऑगस्ट. In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week, and domestic investors to focus on FOMC minutes, corporate earning results, and geopolitical developments for cues next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाह

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, आपके साथ मैं विकास।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6000

0: 400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स यानी वाणिज्य का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित किया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पाई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। एयर इंडिया ने कल कहा कि विशाखापत्तनम माने जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। 70,342 वर्ग मीटर में फैले इस नए टर्मिनल से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said, the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections.

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं धर्मेंद्र मणि राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम है और उनके द्वारा लिए गए विषयों का विस्तार है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय खेलों के बारे में बहुत सी बात की थी। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो अंश जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणाओं और आशीर्वचनों के बाद तो ग्लासगो में कमाल ही हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ शामिल किए गए खेलों में पिछली बार से ज्यादा पदक जीते बल्कि मैदान से पोडियम तक की इस यात्रा में कई इतिहास भी रच दिए। इस दौरान खेल के मैदान पर भारत की बेटियों की ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उपमहानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, आपका भी बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
1: तो अब मैं अपने मन में उठ रही जिज्ञासा और सवालों के साथ साथ आप श्रोताओं के प्रश्नों को लेकर भी तैयार हूं अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से उसका जवाब जानने के लिए। सवालों की शुरुआत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी के साथ। मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ साथ देशवासियों की तरफ से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक के लिए मैदान पर पसीना झोंक रहे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इन शब्दों ने जैसे जादू की झप्पी का काम किया और उनके शब्दों के बाद ऐसा असर हुआ कि पदकों की झड़ी सी लग गई और हमारे खिलाड़ियों ने कमाल ही कर दिया। पिछली बार के पदकों का आंकड़ा पीछे छूट गया, क्या आपको लगता है कि कमाल प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान शब्दों का असर था?
3: निश्चित रूप से, हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के सबसे बड़े लवर हैं और वो बहुत चाहते हैं कि भारत के खेलों की उन्नति हो और उसका जीता जागता उदाहरण है जिस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने उनके मार्गदर्शन में लेके आए हैं, जो कि नया खेलो इंडिया है और जो टॉप स्कीम है। आप अगर देखेंगे इन खिलाड़ियों का जो भी इनका रिकॉर्ड है और जहां से भी इनको सहायता मिली है, यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की प्रेरणा इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी थी बल्कि वो जो योजनाएं लेके आए हैं खेल के क्षेत्र में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
1: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा

0: तो आएगा ही आएगा।
1: 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है, उनके मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों न हो, पेरिस की बात क्यों न हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों न हो, या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों न कर ले, खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है, खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
0: और मैम जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
2: निश्चित रूप से, पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई है। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती है जिसको आपने अभी कहा, मैदान से पोडियम तक को, क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है। और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था, मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था, एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है, वो 720 डिग्री सपोर्ट है। और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूं, शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है
0: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया है?
1: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है। ये मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में। करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं
0: जी। तो मैं जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे लेकिन पोडियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी, मैदान की कमी थी और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी ना मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी। बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे। अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
2: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वजह ये थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे, सारे स्थानों पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। तो ये तय किया गया कि हर

0: जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे। खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहाँ पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा। कम से कम 25 खिलाड़ी वहाँ पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का, हर जगह पे एक एक खेल का हम सहायता देंगे। तब ये दूसरा भी प्रश्न आया कि भाई इतने कोच है, कोच ही नहीं थे। तो जो पुराने खिलाड़ी है उनको पास्ट चैंपियन एथलीट बना करके उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको बतौर कोच इन खेलो इंडिया सेंटर्स में रखा गया, तो पुराने खिलाड़ियों को भी रोजगार मिला। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ हर जगह पे, ग्रास रूट पे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ग्रास रूट पे करने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा एलीट लेवल पे भी होना चाहिए। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी में ये खड़ा किया गया। भारत सरकार ने इसका पैसा दिया और इसमें स्पोर्ट्स साइंस जो अब तक भारत के खेलों में सम्मिलित नहीं होता था उसमें बहुत बड़ा एक निवेश था। इसमें स्पोर्ट्स साइंस के जो जितने पद होते थे भारत सरकार सभी का पे देगी और इत्यादि इत्यादि मशीनें देगी, उसका सामान देगी। तो एक एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया। भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड एकेडमी बनाया गया। तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए। तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम। विंटर गेम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पहले जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम। नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी। और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में। तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको 10,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की वो भारत सरकार ने दिया। 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है। अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलीट लेवल पे आ गया। टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए। हमने देखा कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की, कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है। तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ। तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट साइंस जिसकी मैंने अभी बात की उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा। उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा। अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसंरचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है। पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी, नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे। स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों को। साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस उनको भी खेलो इंडिया सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना पाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। पहले तो मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब न सिर्फ वो मैदान पे पहुंचेंगे बल्कि अपनी खेल प्रतिभाओं को कंपटीशन और लीग से निखारेंगे, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, टैलेंट स्काउट होंगे, कम्युनिटी कोच होंगे जो उनकी प्रतिभाएं देखेंगे, ग्राम स्तर पे भी देख पाएंगे क्योंकि कम्युनिटी कोच और जो टैलेंट स्काउट है वो ग्राम ग्राम स्तर तक जा सकेंगे। जोनल टैलेंट सर्च कमेटी बनेगी और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी पहले से थी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इको सिस्टम खड़ा हो गया है जिसने भारत के खेल जगत को एक क्रांति उसने कर दी है।
1: बिल्कुल, क्रांति आई है। और जो खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव हुआ करता था कि खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो सारे दबाव उनके मन से हटे हैं। और हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली हैं और इन गंभीर बातों के बीच अब थोड़ा सा मूड को हल्का किया जाए और हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, और अगर अभी हम आपको सुनाना चाहें तो वो कौन सा गीत होगा।
0: एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे गाने सुनता हूँ, अगर आप उनमें से एक सुनने को बोलते हैं तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार। मैं तो कुंदन लाल सहगल इरा से अभी अरिजीत सिंह के इरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया।
1: वो सुनते हैं आपकी।

0: और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान की सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही, क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी बात है देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है। उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है, कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वो शंका को दूर करने वाली बात हो गई टोक्यो में, और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए। शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया। हम सबके लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें। शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे। लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है, टेरिफिक परफॉर्मेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी
0: जी। और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनकी ट्रॉफियों की। पिछले कुछ वर्षों में अगर

0: दिलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय पुरुष टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जोड़ा। ये जुड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
1: बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है, जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 wickets इन एन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपैरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में, और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
0: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है। पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही है भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट। और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला और फिर सबको दे भी दिया है।
0: और मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 gold medal जीत कर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके और उसमें 8 gold medal महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
2: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसे ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पर रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे, वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 medal जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ी ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, महिला बॉक्सर्स उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है, और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
0: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं?
1: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक

0: है तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए एक अध्यापक पे गई है जहाँ पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है। फुटबॉल की ही बात करें अगर, हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन। और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं। और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके खिलाड़ियों को संस्कृत और खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है और ही हैज ओनली एलाबोरेटेड इट, और ये अच्छी बात है। और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े।
1: जी, सवालों और जवाबों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा। फिलहाल बारी है एक और गीत की। मयंक जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए।
2: इस बार थोड़ा सा नया गीत बताता हूँ। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।

0: और इस गीत के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही 2036 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मैंग जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक बृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट्स साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है। इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है, जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया, जिसमें साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है, एनसीओई, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था, KISC, OKIC, वो तो रहेंगी। तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है, तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है, उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का और अकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
0: जी, तो राजा रमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूं और देखा हूं, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मयंक जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सके, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है, बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े। फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है, तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधारा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे हर जिले में होगा और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते, आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं, कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है और ये नया देश देखने को मिल रहा है, हमारे खिलाड़ी

0: इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स इस तरह के जो टॉप नॉच जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है, तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल न फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध न फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो या जो रिकवरी का हिस्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टिकल का सामना न करना पड़े और कोई उनके पास कमी न रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफकोर्स अधिकारी ही हैं, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं, जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं। तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है, एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स का सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है, और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है। जैसे नीरज चोपड़ा ने कहा था साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सके, तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
1: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था, मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है, उस गेम की बात कर रहा हूँ। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं, लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस, वहां पे स्कॉट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर है जिन्होंने उनका इलाज किया और उनका स्क्वाट लिफ्टिंग भी इम्प्रूव कर दिया, और तब जाके ओलंपिक में मेडल मिला है। कई सारी बातें टॉप्स की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसकी हमारे सामने आती नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त पे पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
2: और राजा सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और

0: कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। एयर इंडिया ने कहा है कि विशाखापत्तनम आने और जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। 70,342 वर्ग मीटर में फैले इस नए टर्मिनल से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। वहीं कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में ग्रुप डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 साल बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Air India has announced that all its flights to and from Vishakhapatnam will operate from the new Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram from today, using the existing airport code VTZ. In a

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संघों में श्रेयसी और कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर आपके साथ ही यहां पर स्टूडियो से सीधा आपके संग संग कुछ गाने गुनगुनाने आई हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत से और शुरू करते हैं

लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में सहरा फिल्म का ये गीत दोस्तों आपने सुना। बोल सजाए हसरत जयपुरी ने और संगीत रामलाल हीरा पन्ना का। आइए अब रुख करें अपने इस अगले गीत की तरफ जो हमने लिया फिल्म अनुपमा से। बोल हैं कैफी आजमी के और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। फिल्माया गया धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर और गाया लता मंगेशकर ने।

न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए, न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए, न रूठा किसी से कीजिए न झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए कभी खुद से भी मिला कीजिए।

मोहम्मद रफी, मुकेश और सुमन कल्याणपुरी की आवाज में दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म का नगमा भी आपने सुना दोस्तों, जो फिल्माया गया धर्मेंद्र, नूतन और रहमान पर। बोल सजाए जीएल रावल ने और संगीत दिया सोनी कोमी ने। बढ़ते हैं हम अपने इस अगले गीत की तरफ, जो लिया हमने फिल्म पारस मनी का। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, बोल हैं असद भोपाली के, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्माया गया है महिपाल और गीतांजलि पर।

वो कहते हैं ना कि जब किसी की याद में डूबो तो बस टूट जाने का दिल करता है, पर क्या करें, अपने दिल को भी यूं ही संभालना पड़ता है। काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, मुझे भी एहसास हो सब कुछ तेरी तरह, मुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, जब मैं नजरअंदाज करूं तुझे तेरी तरह, तू भी तरसे और जागे मेरी तरह, और मैं सोऊं बेपरवाह तेरी तरह।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस गीत से ही जाहिर है कि ये गीत हमने लिया फिल्म आए दिन बहार के से। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्माया गया धर्मेंद्र और आशा पारेख पर। बोल सजाए आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने और आइए अब बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को अगले गीत से सजाते हुए। तो अगला नगमा जो मैं आपके सामने रख रही हूँ दिल दिया दर्द लिया फिल्म से है, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, बोल सजाए हैं शकील बदायूं ने और संगीत दिया है नौशाद अली ने।

नहीं होता आसान जिंदगी में कोई चाहिए से कोई नहीं चाहिए तक का सफर तय करना। बहुत मुश्किल है चाहिए से नहीं चाहिए तक पहुंच पाना। मगर जरूरी है ये सफर भी तय करना, क्योंकि किया जो सफर हमने चाहने से न चाहने तक का, वो मिला या ना मिला ये बाद की बात है। एक मुलाकात खुद से हो गई, बस यह कमाल की बात है।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म भीगी रात का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। फिल्माया गया मीना कुमारी पर, बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत रोशन का। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संगों में श्रेयसी, और आइए अब बढ़ चलें अगले इस गीत की तरफ। आरती फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है रोशन का।
1: देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

अगर कभी जिंदगी मुझे थका दे या मैं अंदर ही अंदर बिखरने लगूं, अगर कभी जिंदगी मुझे थका दे या मैं अंदर ही अंदर बिखरने लगूं, तो मेरे आंसुओं की वजह मत पूछना, मुझे मजबूत बनने की सलाह भी मत देना, बस मेरे पास चुपचाप बैठ जाना और मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से नहीं किसी अपने की मौजूदगी से हल्के हो जाते हैं, कुछ टूटन समझाने से नहीं साथ निभाने से जुड़ती है, और उस वक्त तुम्हारा कुछ ना कहना भी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तसल्ली होगी।

और दोस्तों अब इसी नगमे के साथ हमें हमारे कार्यक्रम को देना होगा यहाँ विराम और इसके बाद अब आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार समाचारों के पार मैं श्रेयशी अगला कार्यक्रम रात सुरमई लेकर फिर से आपके साथ जुड़ जाऊंगी नमस्कार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी

0: तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पाई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिशों के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। ये बातचीत अमरीका के समर्थन वाले उस नए 15 सूत्रीय रोडमैप के लिए हो रही है जिसके तहत हमास को गजा में हथियार छोड़ने हैं और इसराइल को युद्ध से बर्बाद हुए फिलिस्तीनी इलाकों से पीछे हटना है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि राज्य में 1,440 चयनित डॉक्टरों के आने वाले दिनों में नियुक्ति किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 600 और डॉक्टरों की भर्ती का काम चल रहा है, साथ ही लगभग 250 डेंटिस्ट के भी जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने की उम्मीद है। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। वहीं कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले ग्रुप डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Air India has announced that all its flights to and from Vishakhapatnam will operate from the new Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram from today using the existing airport code VTZ. In a press release, Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights between Bhogapuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. Following the Comptroller and Auditor General of India CAG report on drinking water quality, Railway Minister Ashwini Vaishnav yesterday conducted a day-long review of drinking water quality across the railway network. He also directed officials to take immediate corrective measures to ensure safe and clean drinking water for passengers. As part of the measures, a new tank-to-tap water

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम रात सुरमई। संघु मिश्र ऋषि और आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का इस गीत से।

गुलाम फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल सजाए समीर ने और संगीत है जतिन ललित का। बढ़ते हैं अब अपने अगले गीत की तरफ। पिक्चर है सलामी और आवाजें दी हैं कुमार सानू और आशा भोसले ने, बोल सजाए हैं समीर ने और म्यूजिक है नदीम श्रवण का।

फिल्म मिस्टर आशिक का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाज़ कुमार सानू की, बोल सजा इंदीवर ने और म्यूजिक जतिन ललित का। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। बाजीगर से लिया है हमने ये अगला नगमा, आवाज़ें हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की, बोल सजाए देव कोहली ने और संगीत है अनु मलिक की।

मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना? लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

खामोशी फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाज़ें अलका याग्निक और हरिहरन की, बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत जतिन ललित का। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति की, बोल सजाए हैं जावेद अख्तर साहब ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

वैसे तो गीतों का सिलसिला हमेशा ही एफएम गोल्ड पर जारी रहता है ठीक उसी तरह हमारा ये कार्यक्रम रात सुरमई भी हमेशा यूं ही जारी रहेगा ठीक इसी समय पर लेकिन क्या करें घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि जल्दी अब इस कार्यक्रम को हमें देना होगा विराम लेकिन बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए क्योंकि इसके बाद

यूं ही एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला रहेगा जारी। लेकिन अचानक से कुछ बातें हैं जो जहन में घूमने लग गई हैं। क्यों कई बार ऐसा होता है कि इम्प्रेशन से लेकर डिप्रेशन तक, रिलेशनशिप से लेकर अकेलेपन तक, चैटिंग से लेकर ब्लॉक लिस्ट तक, और फिर समझ आ जाती है एक वो बात, कौन सी? ना जिक्र कर ना फिकर कर, बस अपने जज्बातों की कदर कर। जो तेरा होगा वो तुझे ढूंढ ही लेगा, बस तू अपनी बारी का सबर रख। कई बार ऐसा लगता है ना दोस्तों कि जिंदगी भर हमने कईयों के पीछे भागा, चाहे वो इंसान हो, जज्बात हो या कोई चीज हो, अंततः समझ में यही आ जाता है कि वो अपने तक तभी आएगी जब उसका सही समय आ जाता है। तो मैं तो आपसे बस यही कह रही थी कि जब किसी का सही समय आएगा तो ही वो गीत आप तक पहुंच पाएगा। तो ठीक है, अब रात सुरमई कार्यक्रम को हमें समेटने से पहले एक ये आखिरी नगमा आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। फिल्म अशोका से लिया ये गीत हमने अलका याग्निक की आवाज़ में, बोल सजाए गुलजार ने, और म्यूजिक दिया अनु मलिक का।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं गरीबों महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा गरीब अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की इन तीनों

0: विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया ने कहा है कि विशाखापट्टनम आने और जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरा मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। कल इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। इंदौर नगर निगम लगभग 1,97,00,000 रुपए की लागत से ये प्रतिमा और उसका चबूतरा बनवा रहा है। ये प्रतिमा गन मेटल से बनाई जाएगी और इसके लगभग चार महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। ये जगह लोगों को देश के प्रति अटल बिहारी वाजपेयी की सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाएगी। विश्व कप में आज भारतीय पुरुषों की टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। वहीं कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Air India has announced that all its flights to and from Vishakhapatnam will operate from the new Alluri Sitarama Raja International Airport at Bhogapuram from today, using the existing airport code VTZ. In a press release, Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights from between Bhogapuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. Following the Comptroller and Auditor General of India CAG report on drinking water quality, Railway Minister Ashwini Vaishnav yesterday conducted a day-long review of drinking water quality across the railway network. He also directed officials to take immediate corrective measures to ensure safe and clean drinking water for passengers. As part of the measures, a new tank-to-tap water filtration and monitoring system will be installed at nearly 20,000 locations, including water coolers, and a comprehensive water filtration and monitoring system will be installed at approximately 20,000 points across the railway network, along with the replacement of water tanks. The minister stressed the need for strict compliance with regular water quality testing at both source and outlet points. He also called for centralized monitoring, clear accountability and regular cleaning and maintenance of water storage tanks. US negotiator and President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, held a rare meeting with the Hamas chief yesterday in a new diplomatic effort to make progress in the stalled Gaza ceasefire. Kushner will meet with Israel's PM today. The talks aim to salvage the new 15-point

3:56 हुए हैं दोस्तों, इस समय आपने ट्यून किया है FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और आइए सुनते हैं प्रोग्राम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कहते हैं बारिश की पहली फुहार मिट्टी की सौंधी खुशबू और खिड़की पर टप टप गिरती बूंदे। सावन का मौसम आते ही जैसे दिल भी कोई मीठी सी धुन गुनगुनाने लगता है। कहते हैं ना बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि ये तो पुराने एहसासों को भी जगा देती है। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह, और कभी बस चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनकर। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को अपने सुर में समेटे है फिल्म अनजाना का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

कभी कभी बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, वो अपने साथ कुछ अधूरी सी यादें, कुछ अनकहे एहसास और दिल को छूने वाली एक नर्म सी कहानी लेकर भी आती है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का। एक ऐसा गीत है जिसमें एहसास जगाता है बारिश की बूंदों के बीच, जब दो दिल करीब आते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति भी उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई हो। इस गीत में बारिश है, रोमांस है और एक ऐसी मासूमियत है जो आज भी सुनने वाले के मन को भिगो देती है। कभी खिड़की पर गिरती बूंदों को देखते हुए, कभी किसी पुरानी याद में खोए हुए, ये गीत हमें उस खूबसूरत एहसास तक ले जाता है जहाँ शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं।

कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये प्यारा सा गीत। दोस्तों, काले बादल जब आसमान पर छाते हैं तो मौसम ही नहीं बदलता बल्कि दिल का मिजाज भी बदल जाता है। कभी ये बादल किसी पुरानी याद को साथ ले जाते हैं तो कभी आने वाले खूबसूरत पलों की उम्मीद जगा देते हैं। बारिश की बूंदों में एक अजीब सी मिठास होती है, जैसे प्रकृति धीरे से कह रही हो कि इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक दिन खुशियों की फुहार जरूर बरसेगी। और जब ऐसे मौसम में कोई प्यारा सा गीत गानों तक पहुंचे तो यकीन मानिए ये सफर और भी सुहाना हो जाता है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं अनजाने फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडेकर और साधना सरगम ने।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन किसी खूबसूरत सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म पहेली का, जिसमें एक प्यारा सा लोक रंग छुपा हुआ है, प्रेम और प्रकृति की खूबसूरती एक साथ घुली हुई महसूस होती है। तो आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर और हेमलता की आवाजों में फिल्म पहेली का ये प्यारा सा गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: तीन बजकर 34 मिनट और 20 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो दोस्तों, मौसम के बारे में और बारिश के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, अब कुछ अलग बात करते हैं। कभी किसी की एक मुस्कान दिल को रोक लेती है, कभी कोई अंदाज बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है, और फिर दिल है कि मानता ही नहीं। हाँ दोस्तों, हम आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत, जहाँ शिकायतें भी प्यारी लगती हैं और किसी की अदाएं दिल की धड़कनों को और भी तेज कर देती है। इस गीत में मोहब्बत का वो खूबसूरत अंदाज है जिसमें थोड़ी शरारत है, थोड़ी झिझक है और बहुत सारी अनकही बातें हैं। रिश्तों में भी यही छोटी छोटी अदाएं तो यादें बन जाती हैं, कभी मुस्कुराने की वजह तो कभी दिल को गुदगुदाने वाला एहसास। तो आइए सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत, आवाज़ कुमार सानू और अनुराधा पौड़वाल की।

दोस्तों, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो हर किसी की जिंदगी में पूरी नहीं होती, और कुछ रिश्ते, कुछ पल, कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिनकी कीमत हमें उनके खोने के पास समझ आती है। अब जो गीत आप सुन रहे हैं, इसी खूबसूरत सच को बयां करता हुआ ये गीत है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और किसी का सच्चा साथ, ये हर

इंतज़ार, ये भी मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा है। जब किसी अपने के आने की उम्मीद दिल में होती है तो वक्त की हर घड़ी जैसे उसी एक पल का इंतज़ार करने लगती है। शायद रिश्तों की खूबसूरती भी इसी में है कि किसी का साथ मिलने से के पहले भी और उसकी उम्मीद दिल को खुश रखती है, और जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो वही पल सबसे ख़ास बन जाता है। तो आइए उम्मीद और इंतज़ार की इसी मीठी सी कहानी को महसूस करते हुए सुनते हैं फिल्म दीवाना का ये खूबसूरत गीत, जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू और साधना सरगम ने।

दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंत में बस हम यही कहना चाहेंगे कि कभी-कभी जिंदगी में किसी एक इंसान का मिल जाना जैसे पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दे देता है। मुश्किलें वही रहती हैं, रास्ते वही होते हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। किसी का साथ मिल जाए तो लगता है जैसे उदासी के बीच भी मुस्कुराने की वजह मिल गई हो, जैसे अकेलेपन के बीच कोई अपना हाथ थामने आ गया हो। रिश्तों की असली खूबसूरती शायद यही है, कोई आपकी जिंदगी की हर परेशानी खत्म भले ही ना कर सके, लेकिन उसका साथ आपको हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दे डाल सकता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हंसते जख्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ कल नेपाल के 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ आज टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। वे नेपाली सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे और नेपाली सेना के सैन्य

4:10 हुए हैं। आकाशवाणी का दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम अरुणिमा, और एक बार फिर से हूँ आपके साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जिंदगी की राह पर चलते हुए एक बात हमेशा याद रखिए, रास्ते कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कदम संभाल कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि मंजिल सिर्फ तेज़ चलने वालों को नहीं बल्कि सही दिशा में चलने वालों को ही मिलती है। कभी रास्ते में ठोकर मिले तो रुकिए मत, उससे सीखिए। कभी कोई आपको पीछे खींचे तो अपनी रफ्तार मत भूलिए, और जब रास्ता मुश्किल लगे तो खुद से बस इतना कहिए, मैं गिर सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं। जिंदगी भी तो यही कहती है कि आंखें खुली रखो, दिल मजबूत रखो और हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, क्योंकि सफर लंबा है और मंजिल आपकी अपनी है।

कभी छोटे कभी खरे कभी खोटे कभी दुबले कभी मोटे कभी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है।

0: भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

दोस्तों, जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा लगता है कि हम जैसे बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान के साथ एक ऐसा साथी हमेशा रहता है जो कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता उसका, और वो है उसका अपना हौसला। जब रास्ते मुश्किल हों, जब अपने भी साथ नजर ना आए, तब अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए। वही आवाज़ आपको याद दिलाती है कि आपने अब तक

इतनी मुश्किलें पार की हैं। हर अंधेरे रास्ते में आपकी उम्मीद आपका साया बनकर आपके साथ चलती है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया में।

जिंदगी सचमुच एक खेल है, कभी जीत हमारे कदम चूमती है तो कभी हार हमें कुछ ऐसा सिखा जाती है जो कोई किताब भी नहीं सिखा सकती। इस खेल में हर किसी की अपनी पारी है, अपने उतार चढ़ाव हैं, कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है, लेकिन याद रखिए खेल वही जीतता है जो मुश्किल चाल देख

मैलान छोड़ता नहीं बल्कि अगली चाल सोचता है तो अगर आज हालात आपके मुताबिक नहीं है तो मायूस मत होइए क्योंकि जिंदगी का खेल अभी बाकी है आपकी कहानी अभी बाकी है

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ किसी एक इंसान से जुड़ने का ही नाम नहीं, बल्कि प्यार तो उस एहसास का नाम है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब दिल में प्यार होता है तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं, रास्ते आसान नहीं तो कम से कम हौसले वाले जरूर लगते हैं। इसलिए अपने दिल में प्यार बचा कर रखिए, अपने सपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए और सबसे ज़्यादा अपने उस सफ़र के लिए जो आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बना देता है। क्योंकि जिस दिल में प्यार और उम्मीद जिंदा हो, उसे ज़िंदगी की कोई भी चुनौती लंबे समय तक नहीं रोक सकती।

4:34 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ, और चैनल वही है आपका आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त कभी रुकता नहीं और जीवन के दिन सचमुच छोटे होते जाते हैं, तो शिकायतों में दिन क्यों गंवाना। जब कह जो कहना है आपको वो आज ही कह दीजिए, जिसे अपना मानते हैं उसे आज ही महसूस कराइए, और जो सपना दिल में है उसके लिए आज ही एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि कल की गारंटी किसी के पास नहीं होती। जिंदगी छोटी हो सकती है, मगर अगर आपका दिल बड़ा हो तो वही छोटी सी जिंदगी भी बहुत बड़ी कहानी बन जाती है।

दोस्तों, जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हालात हमें पीछे हटने, लोगों से नजरें चुराने और अपने सपनों को छुपा देने पर मजबूर कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी पहचान आपकी मुश्किलें नहीं बल्कि उनसे लड़ने का आपका हौसला है, आपका नजरिया है। हर इंसान की कहानी में कुछ अधूरे पन्ने होते हैं, कुछ हार होती है, कुछ पछतावे भी, लेकिन कहानी खूबसूरत बनती है जब इंसान उन पन्नों को पलटकर आगे बढ़ना सीखता है। तो सिर उठाकर चलिए, क्योंकि जिंदगी छुपने के लिए नहीं, खुलकर जीने के लिए मिली है। और आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि एक दिन पीछे मुड़कर देखे और कह सके, मैंने हालात से नहीं, अपने हौसले से अपनी पहचान बनाई है।

कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते और ऐसे लोगों को का साथ देती है जिन्हें वक्त चाहे जितना आगे ले जाए दिल उनसे दूर नहीं हो पाता। लेकिन किसी को याद रखना सिर्फ बीती हुई बातों में ठहर जाना नहीं है, बल्कि उनसे मिली सीख को अपनी जिंदगी में आगे लेकर चलना भी होता है। जिन लोगों ने हमारे सफर में हमारा साथ दिया, उनकी अच्छाइयों और उनकी बातों को दिल में संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, इंसान की असली पहचान उनके रिश्तों और उनकी एहसान से मिली होती है। जो गुजरे हुए कल को बोझ बनाते हैं वो हमेशा कठिनाइयों में रहते हैं, इसलिए गुजरे हुए कल को बोझ मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। जिन्होंने आपका साथ थामा उन्हें याद रखिए और जो आज आपके साथ हैं उनकी कद्र कीजिए।

और चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि जिंदगी में कुछ मुलाकातें पल दो पल की होती हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए हो ये जरूरी नहीं, जरूरी तो ये है कि जब तक आपका साथ हो उस पल को पूरी शिद्दत से जिया जाए। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही होती है, आज जो समय हमारे पास है शायद वो समय कल ना हो, इसलिए बीते हुए कल को लेकर पछतावे के बजाय आज को मुस्कुराना सीखिए और आज मुस्कुराते रहिए। जो लोग आपकी जिंदगी में आए उन्होंने आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाया, और जो चले गए उन्होंने आपको और मजबूत बनाया। तो इस पल को थाम लीजिए, अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, दिल से कहिए जिंदगी लंबी हो या छोटी, खूबसूरत वही है जिसे हम पूरे दिल से जीते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी अर्चना बिसारिया को आप अनुमति दीजिए, लेकिन आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। आज इस सिलसिले में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, वहीं वाणिज्य का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की अपनी योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए फिर से बुलाया है। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगा। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। इसमें 22 चेक इन काउंटर, 18 सेल्फ बैगेज ड्रॉप यूनिट, स्क्रीनिंग सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं और 7 एरोब्रिज शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला

के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव कल खेल समाप्त होने के समय क्रीज पर थे। देवदत्त पड्डीकल अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर 167 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पांच बजकर दस मिनट और पचपन सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और दोस्तों एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वाणी जयराम के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म गुड्डी से।

वाणी जयराम के गाए इस गीत के बाद आइए अब सुनवाते हैं आपको सरगम फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

दोस्तों आइए अब आपको सुनाते हैं हेमलता की आवाज में आंखियों के झरोके फिल्म का एक गीत।